0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: गंगापुर सिटी की धरती।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
6: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
7: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
6: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
8: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आप

0: उनका सरताज है।
1: Asta Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
2: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। नई सुबह, नई उम्मीद और कुछ नया कर दिखाने का और एक खूबसूरत मौका लेकर हाजिर हम आपके अपने मनपसंद रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस पर। जहां भी है, घर, खेत, दुकान या अपने काम की शुरुआत, बस मुस्कुरा कर कीजिए, क्योंकि आज का दिन खास बनने वाला है आपके मनपसंद हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ। तो चलिए करते हैं खूबसूरत सफर का आरंभ। लीजिए और सुनिए हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
3: दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो जी, नाम बताएं आपका।
1: जी सुनीता।
0: सुनीता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मोकला से।
0: बताएं सुनीता जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: रेडियो डीएस से वो गाना सुनना चाहते हैं फॉर्चुनर जी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे गाना रेडियो डीएस में। कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः

0: पाठ। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: वो धन्यवाद। हेलो
3: हेलो
2: जी, बताएं नाम बताएं आपका।
3: जी चौधरी किरण कर रहा हूँ।
2: चौधरी जी, महावीर जी से बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर।
3: ब्रावा सर सुपर हिट लाए हैं।
2: बताएं सर।
3: आइए आपका इंतजार था।
2: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल के धन्यवाद।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: नमस्ते सर, आप बताएं। नमस्ते
3: सर,
2: ठंडी राम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गाँव बचरिया से बोल रहा हूँ।
2: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: रिया मोरे राखे के बंधन को निभाना।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का। बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: मनीष गुजर।
1: मनीष जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: क्या
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: हेलो
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं मनीष जी?
0: दाना नोड़ जा रहा है, चला दो।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
2: जी नाम बताएं।
3: हमारा नाम सोनम कंवर है।
2: सोनम कंवर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: करौली जिला से।
2: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: वो बुलबुला बुलबुला रे बुलबुला।
2: बिल्कुल सुना रहे मैम आपका, आपकी फरमाइश करेगा ना रेडियो डीएस में कुल के। धन्यवाद।

0: में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6। दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: गंगापुर सिटी की धरती।

0: ट्यून इन कर रही हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: हेलो
2: जी, नाम बताए।
1: गुलशन।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं गुलशन?
1: गंगापुर सिटी।
2: बताए गुलशन, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: निमोड़ा सॉन्ग।
2: निमोड़ा सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश पर ये बेहतरीन सा गाना रेडियो DS में खुद किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।
2: जी नाम बताएं।
3: अभिषेक मीना।
2: अभिषेक मीना जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मुंगापुर सिटी।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: मैं ना बैठू पीछे तू गदी बहुत बजा रहे हैं।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे गाना रेडियो डी एस पे। कुल किया धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं आपका।
0: पार्थ गुनावत।
1: पार्थ गुनावत जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सिंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: लीजेंड सुपर मूसे वाला।
1: बिल्कुल, लीजेंड सुपर मूसे वाला गाना सुना रहे हैं सर आप। आपकी फरमाइश पर रेडियो डीएस में खुल के धन्यवाद।

0: बना दी जोड़ी सुना रहे हैं सर। जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: मोहसिन।
0: मोहसिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: संजय कॉलोनी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हेलो,
1: रब ने बना दी जोड़ी
0: सुना।

0: दिखता हीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: गंगापुर सिटी की धरती।

0: my name is Asta Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: सर नमस्ते।
6: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
5: नाम प्रकाश।
6: प्रकाश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: छोटी रही।
6: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो पे?
5: बंजारा फिल्म का गाना है ना, कब आएगा मेरे बंजारा।
6: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:47 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों सभी श्रोताओं से निवेदन है कि एक बार ही कॉल करे, बार बार परेशान ना करे।

0: जी सर नमस्ते।
1: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
2: मोहित।
1: मोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मासम शर्मा को।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश से।

0: में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
2: हाँ भैया, योगेश जांगड़े में, मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
2: गाना आप फिल्म तिरंगा से सुनवा देंगे, इसे समझो ना रेशम का तार भैया।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश, पूरे बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में आपने पुल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: संजू संजू नहीं संजू नहीं संजू
1: अली बेटे अली अलोक जल्दी करो इसे अस्पताल ले चलते हैं
0: नहीं शांति नहीं लगता आज मेरे जाने का वक्त आ गया
1: नहीं
0: यार ऐसा नहीं हो सकता हाँ यार बहन अपने इस भाई को रागे नहीं बांधूंगी

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो गंगापुर राजस्थान
3: जी। यस, नाम बताए आपका।
2: हाँ जी सर जी, मीना साहब जी, प्यार सत्य श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल सर। कैसे
2: मैं जी पिंड माउंट क्लोजर जिला भिंडा पंजाब तो जगजीत मतलब सर जी।
3: जगजीत जी कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक सर जी, तुम दसो जी छोटी सेहत जी, साढ़े मम्मी पापा भैन भरा ठीक ठाक है जी, सारे बाल बच्चे जी,
3: संपूर्ण परिवार आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं पंजाब से?
2: मौसम कैसा है जी अपने?
3: मौसम बहुत अच्छा है सर गंगापुर सिटी का।
2: अच्छा बारिश आने वाली है जी, थोड़ी थोड़ी लगता है आएगी।
3: बताएं गाना बताएं सर।
2: जी एक आज पंजाबी सॉन्ग सुना दूं मुझे, कुलदीप सिंगर का नाम है जी, कुलदीप मानक
3: जी।
2: एक मेरे मान योग जोगिंदर सिंह टक्कर साहब उन्होंने प्रोवाइडर खन्ने तो है जी, स्वामी धर्मपाल जी है जी, वो गीत है जी कहीं देखो मुकदमा कर भगत सिंह सूरमे ते दफा ला के, भगत सिंह का गीत है जी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में आपने कूल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है सर जी, सत श्री अकाल जी, बाबा नाम चंद जी आज रखे जी,
3: सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM
1: यहां बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: दिव्या।
0: दिव्या कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नहीं,
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ओ सोनिया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: जी नाम बताएं। क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पूरा दोस्त तेरे गंदी मैं तो बस ले रहा हूँ।
0: आपकी आवाज थोड़ी सी अटक के आ रही है, दोबारा बोले।
1: पूरा दोस्त तेरे गंदी मैं तो बस ले रहा हूँ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: तो
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: मेरा नाम विष्णु कुमार है सर।
0: विष्णु जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: इलू इलू क्या है
0: जी?
1: ये इलू इलू क्या है?
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपका। हेलो
0: हेलो,
1: नाम बताएं आपका।
0: सुनहरी।
1: सुनहरी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मानवास से।
1: बताएं सुनहरी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: हाय गर्मी।
1: हाय गर्मी सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश पर ही गाना।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: गोविंद गुप्ता।
1: गोविंद जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगा पट्टी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: वृंदावन से बांके बिहारी जी की आरती।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: हेलो
1: जी, नाम बताएं आपका।
0: मेरा नाम राधिका गुजर है।
1: राधिका गुजर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: नई बात से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: पतली पतली कमर्स की।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं राधिका जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: वंदना मीना।
0: वंदना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम कुलगाम से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हमारा चला दो बोर ना लगा के, वरना उठ के चला जी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी।

दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। राजस्थानी तड़के में।

0: अंकित मीणा।
1: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सिद्धू मूसे वाला के चला दो।
1: बता चला रहे

0: मेरा नाम सोनम कंवर है।
1: कहाँ से बात कर रही
0: हूँ? मैं करौली जिला से बात कर रही हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चरण गीत का चम्मा चम्मा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: कौन हो मीना?
3: कहाँ से बात कर रहे?
2: डीएसआई से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: लॉफर से, हरियाणा से।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: 8 में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी नाम क्या है आपका
3: अंशु शर्मा
2: कहाँ से बात कर रहे
3: हो दो जुलाई
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
3: पतली पतली कमर और उसकी थोड़ी पैदल कर
2: सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा ना

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राधिका गुर्जर।
1: कहाँ से बात कर रही हो?
0: जयपुर वाली शहर में घुमाते पड़ता है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नई वास्ते।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जयपुर वाली शहर में घुमाते।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं? सुनना चाहोगे? चंबल की घाटी? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो हेलो, एक गाना सुना दो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: किवारा बन का।
2: नाम क्या है आपका?
3: इगान।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: नन्नापुर से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: तो फिर आओ।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सीमा शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: यहीं से, गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा
0: चाहोगे? राखी का बंधन है प्यार भैया।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा मैं।
2: दोस्तों, वक्त हो चुका है 12:09 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

लंबी तलाश, फिर तो मिले, जिंदगी मिली, फिर एहसास हुआ प्यार क्या है, सुकून क्या है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: वो तो करना पड़ेगा जी, कुछ होंदे सदा बहार, जेड़े खड़ गए तो खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जाते हैं।

जिंदगी सफल हो जावे, तू गीत मेरे दा कला कला लफ्ज हो जावे।

0: होते तेरा परिवार शायद छड़ के चल गया।
1: तो कुछ साल बाद मैं तेनू एक हाथ में किया तो उसमें रोज पढ़ दी गई
0: पढ़ता सी तो एक दिन
1: हर रोज हर सवेर तू मेरी वेट कर तो मैंने वेखा तेरी छोटी जी स्माइल सब कुछ पता लग जाए।
0: तो पता भी नहीं सी कि इन्नी छोटी जी उम्र च इतना प्यार हो
1: सकता। मैंने पता सी तो आएगा तो मैं तेनू दस सका कि मैं कितना प्यार करती।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हाँ जी, किवें लगे तुहानू इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नू वी जरूर सुनियो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एमपी थिडिया चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में न डालें। रेडियो DS एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो DS पर।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है, तीन बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टोन कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नसरीन क्यों इन चाचा के भांजी है, बचपन से

सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89

0: 89.6 पे रेडियो दी।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

दोस्तों अभी आपने सुना राजस्थानी लोकगीत का एक कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों राजस्थानी कार्यक्रम को यहीं समापन करने की दीजिए इजाजत। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के साथ 4:30 का समय हो चुका है, लेकर हाजिर रहूँगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो
1: जी,
0: नमस्ते।
1: नाम क्या है आपका?
0: चौधरी मेरे प्राण पलक जी महावीर।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना तो चौन के लिए लाए सभी गानों के लिए।
1: हाँ जी बताइए।
0: और देखो पूरा लिखना सभी निकलेगा गाना।
1: हाँ जी सर।
0: इस संसार में सबसे ज्यादा भाई बहन का प्यार है।
1: इस संसार में सबसे ज्यादा भाई बहन का त्यौहार है,
0: प्यार है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: मारो भीरो लाठी राजस्थानी सॉन्ग।
0: कौन सा?
1: मारो भीरो लाठी।
0: मारो भीरो लाठी। ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना

0: परम आदरणीय पलक दीदी सादर नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज मुकेश चंद्र माथुर यानी गायक मुकेश जी का पुण्यतिथि है, उनको याद करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है संगम और गीत के बोल है बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्ते सर।

0: हाइट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: शिवम मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगा जी की कोटी गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: लेवल से सिद्धू मूसे वाले।
1: ओके सर, तुम्हारे आपकी फरमाइश करिएगा ना। हेलो

0: जी नमस्ते सर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: नंदी राम गुजर बोल रहा हूँ सर, बदरका से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हाँ, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: हाँ जी
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिश्तों की मिठास, विश्वास की डोर और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। DS डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा जी, MD अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य अशोक शर्मा जी, प्रदीप यादव जी, अरविंद गौतम जी एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी की ओर से आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां। कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है। दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं। रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर का अपना कम्युनिटी रेडियो। और हाँ, मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना सवाई माधोपुर। आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। DS रेडियो 89.6 पर मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
3: हेलो,
4: नमस्कार।
3: तो नमस्ते, तो नाम क्या है आपका?
4: सबल बोल रहा हूँ यशवंत मैदान से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: गाना है मैं प्यार पर आशिक हूँ।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिश्तों की मिठास, विश्वास की डोर और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। DS डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा जी, MD अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य अशोक शर्मा जी, प्रदीप यादव जी, अरविंद गौतम जी एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी की ओर से आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां। कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है। दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं। रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर का अपना कम्युनिटी रेडियो। और हाँ, मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना सवाई माधोपुर। आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। DS रेडियो 89.6 पर मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर की आवाज। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
3: हेलो हेलो हेलो
4: हेलो मैम, नमस्ते।
3: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
4: अनिल शर्मा।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: पहली बार गाया था पिक्चर 302 की धारा में।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो
5: हेलो,
3: हेलो नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
5: नाम पुष्पराम, नाम ग्राम खिलो खिला से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: प्यार किया है प्यार करेंगे।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद मेरी बहन।
3: वेलकम सर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिश्तों की मिठास, विश्वास की डोर और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। DS डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा जी, MD अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य अशोक शर्मा जी, प्रदीप यादव जी, अरविंद गौतम जी एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी की ओर से आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां। कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है। दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं। रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर का अपना कम्युनिटी रेडियो। और हाँ, मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना सवाई माधोपुर। आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। DS रेडियो 89.6 पर मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर की आवाज। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिश्तों की मिठास, विश्वास की डोर और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। DS डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा जी, MD अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य अशोक शर्मा जी, प्रदीप यादव जी, अरविंद गौतम जी एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी की ओर से आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां। कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है। दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है, तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं। रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर का अपना कम्युनिटी रेडियो। और हाँ, मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना सवाई माधोपुर। आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। DS रेडियो 89.6 पर मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: रिश्तों की मिठास,
1: विश्वास की डोर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज़। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज़।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली।
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: अरे नहीं

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में.

0: नेचुरल।
1: वो तो मैं हुई। अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे। हाँ सौ लिए हैं।

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम। फिलहाल आप इस वक्त मेरे साथ ट्यूनिंग कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिला। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे थे हेलो फरमाइश का। और चलिए दोस्तों 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम भजन संध्या।

0: रिश्तों की मिठास
1: विश्वास की दूर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षा बंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: रिश्तों की मिठास, विश्वास की डोर और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। DS डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा जी, एमडी अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य अशोक शर्मा जी, प्रदीप यादव जी, अरविंद गौतम जी एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी की ओर से आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां। कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है। दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं। रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर का अपना कम्युनिटी रेडियो। और हाँ, मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना सवाई माधोपुर। आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। DS रेडियो 89.6 पर मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर की आवाज। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का
1: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रिश्तों की मिठास,
3: विश्वास की डोर
2: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
3: DS संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: DS डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
3: MD श्री अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
2: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
3: रेडियो DS आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
2: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
3: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है, भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
2: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है, तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
3: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
2: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो DS 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
3: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: जय जय महाराणा, जय जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।
1: सिंगर गोकुल शर्मा।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: रिश्तों की मिठास, विश्वास की डोर और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। DS डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा जी, MD अवधेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य अशोक शर्मा जी, प्रदीप यादव जी, अरविंद गौतम जी एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी की ओर से आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां। कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है। दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं। रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर का अपना कम्युनिटी रेडियो। और हाँ, मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना सवाई माधोपुर। आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। DS रेडियो 89.6 पर मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर की आवाज। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिश्तों की मिठास, विश्वास की दूर
2: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
3: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
3: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
4: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
2: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
3: रेडियो डीएस आर शिकेश मीणा जी की ओर से
2: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
3: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है, भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
2: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है, तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
3: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
2: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
3: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार
5: दोस्तों, अभी आपने सुना भजन संध्या कार्यक्रम और थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम फिल्म संगीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: रिश्तों की मिठास,
3: विश्वास की डोर
2: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
3: DS संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: DS डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
3: MD श्री अवधेश शर्मा जी,
4: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
2: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
4: रेडियो DS आर्शिकेश मीना जी की ओर से
2: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
3: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
2: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
3: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
2: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो DS 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
3: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
3: रिश्तों की मिठास,
4: विश्वास की डोर
3: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
4: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
4: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
5: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
3: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
5: रेडियो डीएस आरशिकेश मीणा जी की ओर से
3: आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
4: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
3: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
4: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
3: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
4: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
6: दिल तक 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
6: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: 89.6 DSFM पे।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिश्तों की मिठास, विश्वास की डोर
2: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: DS संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: DS डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: MD श्री अवधेश शर्मा जी,
3: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
2: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
3: रेडियो DS आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
2: आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
2: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
2: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो DS 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो DS 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिश्तों की मिठास,
2: विश्वास की डोर
1: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो DS 89.6 एवं DS साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
2: DS संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: DS डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
2: MD श्री अवधेश शर्मा जी,
3: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
1: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
3: रेडियो DS आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
1: आप सभी को प्रेम, भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
2: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
1: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज,
4: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: रिश्तों की मिठास
1: विश्वास की डोर
0: और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। इस पावन अवसर पर रेडियो डीएस 89.6 एवं डीएस साइंस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी बचपन पब्लिक स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी की ओर
1: डीएस संपूर्ण परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डीएस डायरेक्टर डॉक्टर श्री उमेश कुमार शर्मा जी,
1: एमडी श्री अवधेश शर्मा जी,
2: प्रधानाचार्य श्री अशोक शर्मा जी
0: एवं बचपन स्कूल के प्रिंसिपल विनोद गौतम जी,
2: रेडियो डीएस आर्षिकेश मीणा जी की ओर से
0: आप सभी को प्रेम भाईचारे और खुशियों से भरे रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां।
1: कच्चे धागे में बंधा रिश्ता बड़ा खास होता है। भाई बहन का प्यार ही तो जिंदगी का एहसास होता है।
0: दूरियां चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा पास रहता है। राखी का ये त्योहार हर रिश्ते में मिठास भरता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर बहन की मुस्कान को अपना सबसे खूबसूरत उपहार बनाएं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को प्रेम और सम्मान के साथ मनाएं।
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो।
0: और हाँ, आशी मीणा पलक शर्मा के साथ आप सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6 पर। आपका अपना रेडियो, आपके अपने लोगों की आवाज। रेडियो डीएस 89.6 मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर की आवाज।
1: आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

दोस्तों रात्रि के 11:50 का सब हो चुका है। आज की सभा का यही समापन करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि मित्रों। सुबह मिलते हैं 5:50।